आपके हसीन रुख, संग बाई मोहम्मद रफी, कंपोज्ड बाई ओपी नैयर. होप यू लाइक इट. द नेक्स्ट वन इज कंपोज्ड बाई नौशाद फ्रॉम द 1967 मूवी राम और श्याम, संग बाई मोहम्मद रफी अगेन. एंड लेट अस लिसन टू दिस सॉन्ग पिक्चराइज्ड ऑन दिलीप कुमार.

0: खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही है।